0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
4: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: शशी 23 697 र 98 014 83 697
1: बहिरोपण निवारण कार्यक्रममा सहभागी हौ, नियमित कानको जाँच गरौँ।
2: रंग बहार
3: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
2: बर्जर पेंस ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
3: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि। घर रंगाओ, खुशी बनाओ, उपहार जित्ने अवसर पाओ।
2: बर्जर पेंस।
4: यो कृष्णसार एफएम
5: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज
6: गोरखा चौतारी म्युजिक प्रस्तुत गर्दछ।

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: टाइम चेक
2: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज।

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
4: आसान पाई प्रोडक्ट्स प्रालीको हो
5: राष्ट्रको शान किसान
4: अ कम्प्लीट पाइपिंग सोल्युशन्स

0: रंगा उदय देश मेरो एवरेस्ट।
1: खुशी के खबर, खुशी के खबर। हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा डेटी आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा डेटी आयल बा। ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा डेटी रलेक जानकारी कराईटी।
2: जस्तक सर्जरी के सक्कू उपचार, प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कू उपचार, नसा व हड्डी रोग के सक्कू उपचार, मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कू उपचार, छाला रोग के उपचार, नाक कान घाटी रोग के सक्कू उपचार सेवा देती आयल बा।
1: ओस्तक सुगर, ब्लड प्रेशर, मुटु रोग, पेट, छाती, कलेजो संबंधी सक्कू उपचार, पैथोलॉजी लैब सेवा, वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और सक्कू सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईटी।
2: नोट, ई अस्पताल कार्यरत सक्कू डाक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जाँच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा। नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चोक नेपालगंज, संपर्क नंबर 081536465, 98239080665 ओ 98482804465।
3: नमस्ते दाई।
4: नमस्ते नमस्ते, धेरै दिन पछि देख्यौ त भाइ।
3: विदेश नाटेको दाई, प्रोसेस गर्दै थिए। अहिले भर्खरै एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरबाट स्वास्थ्य जाँच गराएर आएको।
4: समयमै सही ठाउँमा गएछौ त। अब जहाँ पाए त्यही स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा त ठगिने सम्भावना पनि त हुन्छ नि।
5: तपाईँ पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने नक्कली स्वास्थ्य परीक्षणदेखि सावधान।
6: सुदूरपश्चिम कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशको श्रम मन्त्रालयबाट मान्यता प्राप्त एकमात्र पुरानो नेपालगञ्जमा रहेको एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरमा आउनुहोस्। ग्यारेन्टीका साथ स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस्। अनलाइन स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो।
7: हाम्रा विशेषताहरू:
6: वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको ग्यारेन्टीका साथ अनलाइन मेडिकल गरिन्छ।
7: प्रत्येक दिन पेट, छाती, मुटु तथा सुगर थायराइड रोग विशेषज्ञबाट ओपीडी सेवा।
6: महिला तथा प्रसूति रोग सम्बन्धी उपचार सेवाको साथै निसन्तान, बाझोपन सम्बन्धी नियमित उपचार तथा परामर्श सेवा।
7: प्रत्येक महिनाको तेस्रो बुधबार सुगर थायराइड तथा हार्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुनिल चौधरीबाट उपचार तथा परामर्श सेवा।
6: प्रत्येक महिना हार्दिक आइबीएफ काठमाडौँका निसन्तान, बाझोपन, महिला तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर अर्चना साक्यबाट उपचार तथा परामर्श सेवा।
7: अत्याधुनिक प्रयोगशाला, इको कार्डियोग्राम, इको ईसीजी, डिजिटल एक्सरे सेवा।
6: अत्याधुनिक एआई प्रविधि जडित 4D 5D भएको भिडियो एक्सरे सेवा।
7: प्रत्येक शनिबार प्रयोगशाला सेवामा 40% देखि 50% सम्म विशेष छुट सेवा।
6: प्रबन्ध निर्देशक एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, प्रहरी तालिम केन्द्रको पश्चिमपट्टि, एनआईसी एसिया ब्याङ्क भएको भवनको तेस्रो तल्ला, कारकान्तो चोक, नेपालगञ्ज।
7: सम्पर्क फोन नम्बर 081530274 र 98580212।

0: मा पानी के सतह बढ़ती बा सचेत रही सामान बंधना शुरू करी लाल रंग खतरा के संकेत बहिया कोनो फेन समय मा गाँव मा पैठे से की तुरंत घर छोड़ के सुरक्षित ठाउँ मा जाई
1: पूर्व सूचना पाइल पाछ तुरंत करे पर्ना तैयारी बहिया ऐना चेतावनी पाइल लगत्तै एक दुई घंटा आग करे पर्दा काम घरक सक्कु जहान एक ठाउँ मा जम्मा करना ओ छर छिमेक मफे सचेत कराई
0: नागरिकता जन्मदर्ता जग्गाधानी पुर्जा नगद हो गरगहना हेफे वाटर प्रूफ प्लास्टिक के झोलामा राख के सुरक्षित करना घरम पालल पस्पहुआ डोरी मा से छोड़ना या ऊंच सुरक्षित ठाउँमा लै जाई गर्भवती छोट बच्चा बुढाइलो आपांग हुईल मनैन पहिल प्राथमिकता देखे सुरक्षित आश्रय स्थल ओहर
1: स्थानीय सरकार के समन्वय में संचालित प्रबल परियोजना से जनहित में जारी।

0: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
1: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 9850303479 र 9840211380।
2: ओहो, आज डाइह नै मजा लागत हो। मजासे दवाई करेला कहटु।
3: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइन। पश्चिम नेपालके अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगञ्जमा मिलत।
2: ए बाट ठिक कैलो, साच्ची कि अस्पतालमा काका सुविधा मिलत?
3: उहाँ त 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन ओ लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जरल घाउ उपचार करना संगे एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू, हाईटेक अपरेशन थिएटर हो, सुरक्षित प्रसूति सेवा फे उहाँ पा जाइत। छोट बच्चा हो, भर्खर जन्मल बच्चन के सामान्य से लैके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कई जाइत।
2: ए ओसिनो कला से उहाँ जाई मन फे ढुक्क हुइना चाहल रह।
3: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो। कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा। सम्पर्क नम्बर 081535717। कान्ति आरोग्य अस्पताल, अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा।
2: कान के समस्या बा उपचार करायला कहाँ लैजिदा हो?
3: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र मा जाइन। वहाँ त अनुभवी चिकित्सक वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुइत। ओतरकेल कहाँ हो? वहाँ तो लम्बा समय से कान पक्ति रहना, जीर्ण रोग, काने ढुसी, कान खजोइना, कान कम सुन्ना, कान दम्मा हुइना बिरामी के उपचार और परामर्श वो लम्बा समय से कान पक्ती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार हुईट। वाकर संगे कान कम सुन्ना विटामिन के लाग कान में लगाइना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मेसिन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाइत। जस्ते बीटीई, सीआईसी, आरआईसी जैसिन मेसिन फे वहाँ मिलत।
2: ए ओसिड हो कला से बुडु हो वहाँ ले जाके उपचार करेले से वजह से सुनो से कही ता।
3: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा। बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज छ, फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने, राप्ती रोड बाके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 9984206997, 9985823697 ओ 9014 83697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी।
2: खुशी के खबर, हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा देती आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा देती आयल बा। ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा देती रलेक जानकारी कराईटी।
3: जस्तक सर्जरी के सक्कु उपचार, प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कु उपचार, नसा व हड्डी रोग के सक्कु उपचार, मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कु उपचार, छाला रोग के उपचार, नाक कान घाटी रोग के सक्कु उपचार सेवा देती आयल बा।
2: ओस्तक सुगर, ब्लड प्रेसर, मुटु रोग, पेट, छाती, कलेजो संबंधी सक्कु उपचार, पैथोलॉजी लैब सेवा, वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, ओ और सबको सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमाडौँ मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराइदी।
3: नोट, ई अस्पतालम कार्यरत सक्कु डाक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जाँच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा। नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चोक नेपालगंज संपर्क नंबर 081-536-465 98-249-80-665 ओ 98-482-80-465।
4: रंग बहार
5: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
4: बर्जर पेंट्स ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
5: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि
4: घर रंगाऊ खुशी बढाऊ उपहार जित्ने अवसर पाऊ। बर्जर पेंट्स

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाओ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
0: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
1: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो एक साथ तमाम मेर के सेवा होता रहा जानकारी करावा चाह जाता है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
1: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ ही जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
1: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-239-80-665 और 98-482-80-465।
2: समय में पूर्व सूचना पाई, बहिय के जोखिम से जान जोगाई, विपद बाजा बजा के नई आई, वह हमारे पूर्व सूचना लेके नुकसान हुए नहीं दी।
3: सर्वसाधारण मने बहिया के खबर कैसिन के पैना,
2: जलो मौसम विज्ञान विभाग के पैसा नहीं लगना टोल फ्री नंबर 1155 में फोन कैखा लदियक बहाव बहिया के अवस्था के बारे में निशुल्क जानकारी ली।
3: गांव में राखल सायरन के आवाज हो, लडिया किनार में राखल रंग के अर्थ बुझी।
2: स्थानीय एफएम रेडियो टेलीविजन हो, मोबाइल में ऐना नेपाल टेलीविजन हो, एनसेल के सावधानी एसएमएस नियमित हेरना करी, रंग के संकेत बुझी, पियर रंग सावधानिक संकेत, लदिया में पानी के सतह बढ़ती बा सचेत रही, सामान बांधना शुरू करी, लाल रंग खतरा के संकेत, बहिया कोनो फेन समय में गाँव में पैठे से की तुरंत घर छोड़ के सुरक्षित ठाउँ में जाई।
3: पूर्व सूचना पाइल पाछ तुरंत करे पर्ना तैयारी, बहिया ऐना चेतावनी पाइल लगतै एक दुई घंटा आगह करे पर्दा काम, घरक सक्कु जहान एक ठाउँ में जम्मा करना, ओ छर छिमेक मफे सचेत कराई।
2: नागरिकता जन्म दर्ता जग्गा धानी पुर्जा नगद हो, गरगहना हेफे वाटर प्रूफ प्लास्टिक के झोला में राख के सुरक्षित करना, घरम पालल पशपहुआ डोरी में से छोड़ना या ऊंच सुरक्षित ठाउँ में ले जाई, गर्भवती छोट बच्चा बुढ़ाइलो आपांग हुईल मनन पहिल प्राथमिकता देखे सुरक्षित आश्रय स्थल ओहर ले जाई।
3: स्थानीय सरकार के समन्वय में संचालित प्रबल परियोजना से जनहित में जारी।
4: वाओ, प्लस टू परीक्षा पनि पास भइयो, अब कुन कलेजमा भर्ना हुने होला? लहै बधाई छ। अनि तिम्रो उज्जवल भविष्यका लागि उत्कृष्ट विकल्प नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी छ नि।
5: ए हो र, त्यहाँ के पढ्न पाइन्छ त? अनि त्यहाँको विशेषता पनि भन्देऊ न।
4: त्यहाँ ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बिबिएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ। दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकद्वारा गुणस्तरीय शिक्षण, वातानुकूलित एसी कक्षा कोठा, समृद्ध पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप, नियमित फिल्ड भिजिट तथा औद्योगिक भ्रमण, आधुनिक शिक्षण वातावरण र विद्यार्थी मैत्री व्यवस्थापन सहित आफ्नो उज्जवल भविष्यको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ।
5: ल, तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसो भए म पनि यही भर्ना हुन्छु।
6: हजुर, प्लस टू परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट गन्तव्य नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसीमा ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बिबिएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ।
5: नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी आदर्श ग्रुपद्वारा सञ्चालित। ठेगाना नेपालगञ्ज 10 बाँके औद्योगिक क्षेत्रको ठिक अगाडि। थप जानकारीका लागि सम्पर्क 98 580 36 577, 98 580 28 195 र 98 580 36 811। नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी, सफल भविष्यको बलियो आधार।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज।
1: नमस्कार और स्वागत है कार्यक्रम द्वारे महारे में। आप लोग सुना जाते हैं अपने ही प्रिय स्टेशन रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से प्रसारित वाला कार्यक्रम द्वारे।
2: हाय प्रज्ञा, आज सवेरे से रेडियो लिए बैठो, कहा सुना था?
3: अरे मामा, तुम नहीं जाना थो कार्यक्रम द्वारे मुहारे आओ थे।
2: कब और कौने दिन आओ थे प्रज्ञा?
3: सुनो बताई थे मामा, इतवार मंगल बुध के आओ थे।
2: हाँ, आप लोग कार्यक्रम सुने का न भूला जी, अपने प्रिय संचालिका चंदा जी के साथ में कार्यक्रम द्वारे मुहारे।
1: बदलना आता नहीं हमें मौसम की तरह, बदलना आता नहीं हमें मौसम की तरह, हर एक रूप में तेरा इंतजार करते हैं। बदलना आता नहीं हमें मौसम की तरह, हर एक रूप में तेरा इंतजार करते हैं।
2: कार्यक्रम द्वारे मुहारे हफ्ता में 3 दिन, इतवार के, बुध के, मंगल के, दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक कार्यक्रम सुने ना भूला जाए, धूम धड़ाका चंदा जी के साथ में।

0: रेडियो कृष्ण सारी एफएम 94 मेगाहर्ज में
1: कार्यक्रम द्वारे मुहारे
0: नमस्कार और स्वागत है कार्यक्रम द्वारे मुहारे में। आप लोग सुना जाते अपने ही प्रेस स्टेशन रेडियो की सारे एफएम 94 मेगाहर्ज से प्रसारित वाला कार्यक्रम द्वारे मुहारे। हाँ तो साथी आप लोगों के समक्ष आप लोगों के प्रिय साथी चंदा, और आज बुधवार के दिन आप लोगों के समक्ष फोनिंग प्रोग्राम लाए हैं, और फोनिंग प्रोग्राम में झलक वाला गीत संगीत लेके आए हैं साथी। और झलक माँ जो भी गीत संगीत सुनावा चाहिए आप लोगों के यहाँ, जो गीत सुनावा चाहिए वही गीत में से कोई भी गीत आप लोग पसंद करके सुन सका जाते हैं। अपने तमाम सब साथी मित्र लगाए सब लोग उनका सुनाए सका जाते हैं। तो फोन लाइन से जुड़े के खातिर संपर्क फोन नंबर है 0815-115-122 के लाइन पे आप लोग जुड़ते रहा जाए, तब तक सुना जाए आप लोग झलक।

0: हाँ तो साथी आप लोग झलक सुनागा और झलक माँ कौन कौन सा गीत है आप लोग सुनागा एक बार हम भी बताए दी। कोई साथी हैं पहले टेलीफोन लाइन में उनसे बात कर लिया जाए पहले। हेलो
1: हेलो
0: जी को कहाँ से नमस्कार जी आपके शुभ नाम बोला जाए।
1: झलक नंबर दुई को गीत सुनाई दिन
0: में। झलक नंबर दुई नाम जरा बताइए ना कौन सा बोल बताइए।
1: बैजनाथ गांवपालिका नंबर 6 से दिलीप केसी।
0: दिलीप केसी जी गीत का बोल बताइए। अब नंबर से हम गीत नहीं रखे थे ना।
1: तेरे नाम वाले।
0: तेरे नाम है ना। तो ये जो बजने वाला सॉन्ग है किस किस लोगों को सुनाना चाहेंगे आप?
1: कृष्ण सार परिवार का और जितने लोग कृष्ण सार जिन जिन माध्यम से सुनते हैं उनको सभी को सुनाना चाहते हैं।
0: जी जी दिलीप जी। दिलीप जी जरा अपना रेडियो का वॉल्यूम कम कर दीजिए या दूर हो जाइए।
1: ठीक
0: है। अच्छा यानी कि आपके नाम से पहचानने वाले सभी लोगों को है ना?
1: जी
0: जी धन्यवाद है। कार्यक्रम सुनते रहिएगा ठीक है। आपको आपका पसंद का गीत जरूर सुनने का मिलेगा। तो अब हम इजाजत चाहेंगे। नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार।
0: साथी ही रहे बैजनाथ से फोन करना है दिलीप जी और गीत सुनने चाहिए हैं तेरे नाम के टाइटल सॉन्ग। साथी आप लोग भी प्रत्यक्ष आवाज से जुड़ा जाए जो बजे वाला गीत है अपने तमाम सब साथी मित्र लगाए तो सब लोगों का सुनावा जाए खुद भी सुना जाए। और गीत जो है फरमाइश हो चुके हैं तेरे नाम फिल्म से। तेरे नाम फिल्म से टाइटल सॉन्ग सुनने चाहिए हैं दिलीप जी और यही गीत का आप लोग भी पसंद कर सका जाते। 0841-15-122 के लाइन पर आप लोग आवाज आए 0841-15-122 के लाइन पर। और जो पड़ोस भारत के जो साथी लोग हैं उन लोगों के खातिर 0097-7-81-415-122 के लाइन पे आप लोग आवा जाए फटाफट नंबर डायल करा जाए जो बजे वाला गीत है अपने तमाम सब साथी मित्र लगाए थे सब लोगों का सुनावा जाए। खैर आप लोग फोन लाइन से जुड़ते रह जाए साथी। अब हम चली थे व्यापारिक विश्राम की तरफ और व्यापारिक विश्राम के बाद आप लोग प्यारा सा गीत सुन सका जाते तेरे नाम के टाइटल सॉन्ग।
2: दाई धेरै समयदेखि महिनावारी गडबडी सेतो पानी बग्ने र पेट दुख्ने समस्याले साह्रै दुःख पाएकी छु। कहाँ जाँदा राम्रो होला?
3: म पनि पहिला ग्यास्ट्रिक पाइल्स र पेटको समस्याले धेरै हैरान थिएँ। पछि नेपालगञ्जको मेडिकेयर क्लिनिक गएँ। त्यहाँ महिला र पुरुष दुवैका समस्याको उपचार र अपरेसन एउटै ठाउँमा हुने रहेछ। अनुभवी विशेषज्ञ डाक्टरबाट सेवा पाएपछि अहिले मलाई धेरै आराम भएको छ।
2: हो र त्यहाँ के सेवा पाइन्छ त दाई?
3: सुन त्यहाँ महिलाहरूका लागि बाँझोपन सेतो पानी महिनावारी गडबडी गर्भवती जाँच पाठेघर तथा स्तन सम्बन्धी समस्याको उपचार पाइन्छ र पुरुष तथा अन्य बिरामीहरूका लागि ग्यास्ट्रिक पाइल्स हर्निया एपेन्डिक्स थाइराइड पित्त थैली गाँठा गुठी तथा विभिन्न ल्याप्रोस्कोपिक र लेजर सर्जरी सेवा पनि उपलब्ध छ नि।
2: हजुर मेडिकेयर क्लिनिकमा वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक दूरबीन तथा लेजर सर्जन डाक्टर कमर हसन अन्सारी र वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक स्त्री तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमिरुन निशाले सेवा दिइरहनु भएको छ। तपाईँ पनि आजै कुनै पनि चेक जाँच र अपरेसनका लागि नाम दर्ता गरेर ढुक्क बन्नुहोस्।
3: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 बिपी चोक नजिक उपमहानगरपालिकाको कार्यालय लाइनमा। सम्पर्क नम्बर 97-6-39-11-786 र 98-2-24-92-377।
4: मेडिकेयर क्लिनिक महिला र पुरुष दुवैको स्वास्थ्य उपचारको भरपर्दो गन्तव्य।
5: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन् खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
6: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
5: कति अस्पताल धायौ कति उपचार गरायौ अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
6: होइन हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आइबिएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
7: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
5: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
6: धन्यवाद शुभश्री आइबिएफ हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
7: थप जानकारीका लागि शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक सोल्टीमोड काठमाडौँ फोन नम्बर 98-61-14-16-99।
8: नमस्ते दाई।
9: नमस्ते नमस्ते, धेरै दिनपछि देख्यौ त भाइ।
8: विदेश नाटकको दाई प्रोसेस गर्दै थिए, अहिले भर्खरै एभरेस्ट इन्टरनेशनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरबाट स्वास्थ्य जाँच गराएर आएको।
9: समयमै सही ठाउँमा गएछौ त, अब जहाँ पाए त्यही स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा त ठगिने सम्भावना पनि त हुन्छ नि।
10: तपाईँ पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने नक्कली स्वास्थ्य परीक्षणदेखि सावधान।
11: सुदूरपश्चिम कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशको श्रम मन्त्रालयबाट मान्यता प्राप्त एकमात्र पुरानो नेपालगञ्जमा रहेको एभरेस्ट इन्टरनेशनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरमा आउनुहोस्। ग्यारेन्टीका साथ स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस्। अनलाइन स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो।
2: हाम्रा विशेषताहरू:
11: वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको ग्यारेन्टीका साथ अनलाइन मेडिकल गरिन्छ।
2: प्रत्येक दिन पेट, छाती, मुटु तथा सुगर, थाइराइड रोग विशेषज्ञबाट ओपिडी सेवा।
11: महिला तथा प्रसूति रोग सम्बन्धी उपचार सेवाको साथै निसन्तान, बाझोपन सम्बन्धी नियमित उपचार तथा परामर्श सेवा।
2: प्रत्येक महिनाको तेस्रो बुधबार सुगर, थाइराइड तथा हार्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुनिल चौधरीबाट उपचार तथा परामर्श सेवा।
11: प्रत्येक महिना हार्दिक आइबीएफ काठमाडौँका निसन्तान, बाझोपन, महिला तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर अर्चना साक्यबाट उपचार तथा परामर्श सेवा।
2: अत्याधुनिक प्रयोगशाला, इको कार्डियोग्राम, इको ईसीजी, डिजिटल एक्सरे सेवा।
11: अत्याधुनिक एआई प्रविधि जडित 4D 5D भएको भिडियो एक्सरे सेवा।
2: प्रत्येक शनिबार प्रयोगशाला सेवामा 40%देखि 50%सम्म विशेष छुट सेवा।
11: प्रबन्ध निर्देशक एभरेस्ट इन्टरनेशनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, प्रहरी तालिम केन्द्रको पश्चिमपट्टि, एनआइसी एसिया ब्याङ्क भएको भवनको तेस्रो तल्ला, कारकान्तो चोक, नेपालगञ्ज।
2: सम्पर्क फोन नम्बर 081-530-274 र 98-580-21-822।
12: समय बदलियो, पुस्ता फेरियो, तर साथ साथ उस्तै छ।

0: जनता केबल पाँच दशक देखि
1: रंग बहार रंग बहार
2: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियर
1: बर्जर पेंट्स ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
2: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि
3: घर रंगाओ खुशी बढाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ
1: बर्जर पेंट्स

0: हाँ तो साथी आप लोग झलक सुनागा और झलक माँ कौन कौन सा गीत है आप लोगों का पता भी होगा हुई है। और अब आप लोग फोन लाइन से जुड़ा जाए 0815-1522 के लाइन पे आप लोग आवाज जाए साथी फटाफट नंबर डायल करा जाए और जो पड़ोस भारत के जो साथी लोग हैं उन लोगों के खातिर 0097-7-1812 के लाइन पे आप लोग आवाज जाए और जो झलक माँ है गीत वो आप लोग सुना जाए अपने तमाम सब साथी मित्र लगाए सब लोगों का सुनावा जाए। आज के दिन आप लोगों के समक्ष जो है फोनिंग कार्यक्रम हो रहा था और फोनिंग प्रोग्राम में यहाँ आप लोगों के समक्ष झलक लेके आवाज आते आज के दिन बुधवार के दिन कोई साथी है टेलीफोन लाइन में उनके स्वागत कर लिया जाए पहले। हेलो जी नमस्कार।
1: नमस्कार बहनी नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार जी बतावा जी आपका शुभ नाम।
1: नेपाल राजा।
0: नेपाल राजा अच्छा अच्छा
1: और अच्छा।
0: हाँ सब अच्छा है बढ़िया है और अच्छा। आपके का हाल खबर है अच्छा है
1: सब बढ़िया है कहते बात में रहन अब आए हैं तो पानी पीत रहा है।
0: अच्छा तो आप कहाँ से बोला जाते हो वैसे
1: वार्ड नंबर 12 बिलासपुर।
0: अच्छा अच्छा बिलासपुर से हो ना आप अच्छा हाँ। तो झलक सुना का है आप।
1: हाँ सुना जात रहा है आज पहुँचे रहन
0: सुना जात रहा है कौन सा
1: मियां जी को याद आएगा तो हम कहें लाओ देखी थी।
0: हाँ अच्छा मियाँ जी के याद आएगा तो मियाँ जी का याद करे हो आप तो कल जरूर रही हैं बीमार है तो बतावा जाए कौन सा गीत सुनना चाह जाते हैं आप।
1: अब गीत कौन बढ़िया गीत है तो सुनाई दिया जाए कौन अच्छा।
0: इतना झलक सुना है ना आपका कौन अच्छा ना ही समझ में आवा
1: उनके कान आते एक दूरे सुनाई दो का काट आते मेरे छतरी के नीचे आ जा शर्मा की खड़ी है दूर
0: वो तो वो गीत झलक में है ये नहीं है। अच्छा तो खैर अच्छा ठीक है अच्छा सुनाइबे हम आपका ठीक है
1: चलो ठीक है जोन हो अपने समझ में।
0: हाँ हाँ ठीक ठीक तो बतावा जाए जी नमस्कार। साथी रहे नेपाल राजा फोन करना है बिलासपुर से और कहीं इनकी कुछ सुना दिया जाए गीत अपने समझ से तो ठीक है साथी आप लोग फोन लाइन से जुड़ा जाए अभी गीत फरमाइश ना हुआ है रिक्वेस्ट ना हुआ है तो कोई साथी हैं उनके स्वागत किया जाए। हेलो जी नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार छह महीना की नमस्कार
0: छह महीना के नमस्कार
1: जी
0: छह महीना हुई हो नमस्कार करे
1: आषाढ़ में किया रहे बच्चा।
0: अच्छा अच्छा आषाढ़ माँ और बतावा जाए का हाल खबर है आपके।
1: बढ़िया है अपन सुनाओ।
0: हमरे भी हाल खबर अच्छा है। अरे अच्छा ही बतावा जाए चाचा जी झलक सुना का है
1: ना हम तो भरकर आए हैं अभी दवा लेके हम अभी खोलते
0: हैं। अच्छा अच्छा तो हम सुनाए दी बताए दी है ना आपका झलक में कौन कौन सा गीत है तो ये गीत है झलक मैया दिल फिल्म से हम प्यार करने वाले बोल के गीत है और ऐसे आई मिलन की रात फिल्म से है कसम से और मुझे एक पल चैन ना आए जुदाई फिल्म से है और ऐसे ही नीचे फूलों की दुकान जोरू का गुलाम फिल्म से है प्यार के मोड़ पर बोल के गीत है और ऐसे ही सातों जन्म में तुझको पाके बोल के गीत है तेरी सूरत निगाहों में और तुम सामने बैठो और ऐसे ही यार डाकिए बोल का गीत है गेमलर फिल्म से
1: जोरू के गुलाम सुनाया दिया जाए।
0: जोरू के गुलाम नीचे फूलों की दुकान गाना बहुत अच्छा चूज किया गाया चाचा जी तो
1: फिर सुना हुआ थी कहां पर
0: हाँ वैसे गीत आप एकदम अच्छा सुना मतलब चूज किया गया है कि जितने साथी लोग प्रोग्राम का सुनिए गाना सुनिए तो झूमे लगी है गाने वाली बात है।
1: कल है अंतिम महीना विदाई लेके चली गई फनवा नहीं उठा
0: ना ही तो कल फोनिंग प्रोग्राम ना रहा स्पॉन्सर प्रोग्राम रहा है अभी दुआरे मारे जो हाँ कल
1: हाथी मेरे साथी के फिल्म छोड़ के चले गए
0: ए हाँ तो टाइम हो चुका रहा है ना इसके वजह से और जो है मतलब हम बताना भूल गए जैसे मंगलवार के जो भावना से संबंधित गीत संगीत आवत रहा है ना तो अब स्पॉन्सर प्रोग्राम है तो उमा जो है गजल वाले में फोनिंग प्रोग्राम रहा नहीं है आज के दिन है तो बतावा जाए कि जो बजे वाला गीत है किका किका सुना में चाह जाते हैं आप।
1: सबसे पहले तो आपका और
0: धन्यवाद
1: एफएम परिवार को
0: धन्यवाद
1: और जितने
0: धन्यवाद
1: एफएम परिवार को
0: धन्यवाद
1: और जितने राम स्नेही का

0: रङ्गाउ दैदेस मेरो एभरेस्ट
1: होइन कौशल्या मेमोरियल अस्पताल यही थियो त।
2: ओहो बाजे, अब उता आएन, ठ्याक्कै यता हेर्नुहोस् त पूर्वपट्टि।
3: हाम्रा सेवाहरू: इन्टरनल मेडिसिन तथा फ्यामिली फिजिसियन सेवा, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा, दाँत बङ्गारा तथा मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा, एकुपंक्चर तथा फिजियोथेरापी सेवा, चौबिसै घण्टा रोड एक्सिडेन्ट इमर्जेन्सी सेवा, चौबिसै घण्टा ल्याब एक्सरे र ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, एयर कन्डिसन इमर्जेन्सी वार्ड, स्ट्यान्डर्ड वार्ड तथा क्याबिनहरू।
4: हजुर, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल, कोहलपुर नगरपालिका, वडा नम्बर 9, हलदारपुर बाँके। सम्पर्क नम्बर 081-414-007 र 98-482-63-399।
5: ओहो, घर त बनायो तर आफ्नो मान्छे कोही आयो भने घर पत्ता लगाउनै गाह्रो।
4: किन गाह्रो? मार्बल पत्थरमा नाम लेखाएर राखे पनि भइहाल्यो नि।
5: भन्न त सजिलो छ तर कहाँ खोज्न जाने होला?
4: तपाईँलाई थाहा छैन, नेपालगञ्ज फुलटेक्रा राप्ती रोडमा रहेको न्यू विश्वकर्मा कला सेन्टरमा मार्बल पत्थरमा नाम लेखाउनुका साथै तामा पित्तलमा कम्प्युटरद्वारा नाम लेखाइ गरिन्छ। समिल र सामुदायिक वनको टाँचा बनाउनुका साथै विभिन्न किसिमका मार्बल सिमेन्टको मूर्ति पनि पाइन्छ नि।
6: प्रोप्राइटर राकेश कुमार विश्वकर्मा, व्यवस्थापक त्रिभुवन प्रसाद विश्वकर्मा, न्यू विश्वकर्मा कला सेन्टर, नेपालगञ्ज 5 बाँके।
3: सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 081-536-410 र 98-480-26-435।
7: माया बाबु, टेलर के त सक्कु सामान हो गिल बा, अब मसिन कहाँ से नन्ना हो?
8: छी दादु, फे ठहानी हो कि का उहट हो जे बीएस सिलाई मशीन सप्लायर्स।
7: बीएस सिलाई मशीन सप्लायर मा कौन कौन मेर के मशीन पैठे हैं बाबू?
8: उहाँ त अनमोल, उषा व ताज ब्रांड का संग मेर मेरी कंपनी का सिलाई मशीन बिक्री वो मरमत कई जिठा। एक रख संग संग मशीन संबंधी सक्कु पार्ट पुर्जा वो सामान फे पाजी था। अट्रकेल कहाँ हो? कुशल कारीगर हुकन से मरमत फे करा जी था।
9: एक एक संगे दस्या देवारी हो, छठ त्योहार सम 5-30% सम ग्राहक उपकरण के छूट के व्यवस्था कैल बा।
7: बीएस सिलाई मशीन सप्लायर, घरबाई टोल 2, पीपल चौतरा, नेपालगंज बाके। एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी। प्रोप्राइटर भरत सिंह परियार। मोबाइल नंबर बा 98-481-28-318 और नंबर बा 98-224-52-478। एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी।
10: पिछले सारे फिल्म लगाए दो हमार पिया, पिछले सारे फिल्म लगाए दो हमार पिया।
11: रेडियो कृष्ण सार FM 94 MHz, कृष्ण सार जस तेज।

0: हाँ तो साथी आप लोग झलक सुनागा, और झलक में कौन कौन सा गीत है वो आप लोग पसंद करके सुन सका जाते, अपने तमाम सब साथी मित्र लगाए सब लोग उनका सुनाए सका जाते साथी। तो आप लोग फोन लाइन से जुड़ा जाए 0815-115-122, 0815-115-122 के लाइन पे आप लोग आवा जाए, फटाफट नंबर डायल करा जाए। और जो पड़ोस भारत के जो साथी लोग हैं उन लोगों के खातिर 00971-7-84-15-122 के लाइन पे आप लोग आवा जाए साथी। और जो झलक माँ गीत है वो आप लोग अपने तमाम सब साथी मित्र लगाए सब लोग का सुनावा जाए। झलक माँ गीत है दिल फिल्म से हम प्यार करने वाले, और ऐसे ही कसम से आए मिलन की रात फिल्म से है, मुझे एक पल चैन ना आए ऐसे ही ये फिल्म मतलब। और भी है नीचे फूलों की दुकान वाला गीत तो बच चुका है, तेरे नाम भी बच चुका है, और ऐसे ही प्यार के मोड़ पे, और ऐसे ही सातों जन्म में बोल के गीत है, तेरी सूरत निगाहों में तुम सामने बैठो यार डाकिए बोल के गीत है। तो साथ ही आप लोग फोन लाइन से जुड़ा जाए, आज के दिन आप लोगों के समक्ष झलक लेके आवा जाते बुधवार के दिन। हाँ साथी अब कुछ दिन पहले आप लोगों के समक्ष प्रोग्राम ना लेके आए पाएन कुछ विशेष कारण बस कुछ प्रॉब्लम होए की वजह से, तो लेकिन अब कोशिश यही रही है कि आप लोगों के समक्ष जो है निरंतर ये प्रोग्राम लेके आवा जाइए, आप लोग ये कार्यक्रम के यहाँ सुना जाइए। बाकी दिन तो आप लोग सुना ही जात रहा है, और आप लोगों का हम कार्यक्रम के भी बारे में यहाँ जानकारी कराए दी साथी। जैसे कार्यक्रम माँ जैसे मतलब और दिन जैसे आज बुधवार के दिन आप लोगों के समक्ष हम चंदाली कार्यक्रम जो है लेके आए थे फोनिंग, और ऐसे ही बिहार के दिन कार्यक्रम रहा थे किराव मियाँ जी के साथ माँ चना जोर गरम, और शुक्रवार के तो नहीं रहते खाली रहते, और इसे शनिवार के दिन घर अंगना कार्यक्रम रहते हैं, घर अंगना में यहाँ जो है संध्या शर्मा जी के प्रोग्राम रहते हैं, और वहाँ हम दोनों सखी आए थे हम और संध्या शर्मा जी शनिवार के दिन, और इतवार मंगलवार और बुधवार के दिन ये प्रोग्राम हमरे रहते आप लोगों के समझ लेके आए थे, और इसे ही सोमवार के दिन किराव मियाँ जी के साथ मासून सका जाता चना जोर गरम। तो ऐसे ही हफ्ता में यहाँ तीन दिन प्रोग्राम लेके आवा जाते आप लोगों के समझ हम लेके आए थे, जिससे कि इतवार के दिन फोनिंग प्रोग्राम रहते उमा आप लोग फरमाइश अपने पसंद के गीत संगीत सुन सका जाते, वहाँ झलक लेके ना आवाजी है उमा, बल्कि आप लोग अपने पसंद के गीत कोई भी गीत पुरानी हिंदी नवा रोमांटिक सैड जो भी गीत आप लोग सुने चाह जाते इतवार के दिन फोनिंग प्रोग्राम में सुन सका जाते। और ऐसे ही मंगलवार के दिन आप लोगों के समक्ष गीत गजल लेके आवा जाते हैं, भावना संबंधित गीत संगीत लेके आवा जाते हैं कार्यक्रम, जो कि वो कार्यक्रम स्पॉन्सर रहते प्रायोजक है, ऐसे ही मतलब वो कार्यक्रम जो है स्पॉन्सर प्रोग्राम रहते मंगलवार के दिन बजर पेंट्स जो है स्पॉन्सर की से प्रायोजक की से वो कार्यक्रम कही है मंगलवार वाले कार्यक्रम कही है। और आज के दिन फोनिंग प्रोग्राम रहते आप लोगों के समक्ष झलक वाला, तो साथ ही आप लोग फोन लाइन से जुड़ते रहा जाए। अब हम चले थे व्यापारिक विश्राम की तरफ, और व्यापारिक विश्राम के बाद आप लोग प्यारा सा गीत सुन सका जाते आप लोग फोन लाइन से जुड़ते रहा जाए 0815-115-122 के लाइन पे आप लोग आते रहा जाए, तब तक चला जाते व्यापारिक विश्राम की तरफ।
1: रंग बहार रंग बहार
2: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
1: बर्जर पेंस ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
2: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि, घर रंगाओ खुशी बढाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ
1: बर्जर पेंस।
3: बीर डेंटल
4: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामी छाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
5: डाक्टर लामी छाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधि द्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
4: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
5: फोन नम्बर 081-532-375। नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर अवार्डद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ, एनएमसी 19393, बिडिएस दिल्ली, एफएजिसी मणिपाल, सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका, सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप, एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा, मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया, यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा।
4: विशेषताहरू: दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन, बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरबीनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
3: सम्पर्क गणपति क्लिनिक, सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने, पासङलाम रोड जाने बाटोमा। फोन नम्बर 081531366 र 98085449451।
6: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
7: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदैछ नि, पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
6: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
7: 24 घन्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसियू, पिआइसियू, आइसियू, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसुति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
6: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
7: कान्ति आरोग्य अस्पताल, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज, सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
6: सम्पर्क नम्बर 081535717।
8: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
9: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जात है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देत हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुने वाले बिरामी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
8: अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
9: हाँ, तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली, नेपालगंज छ, फुलटेग्रा, आर्मी ब्यारेक के सामने, राप्ती रोड, बाँके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2397 और 98014-83697।
10: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।
3: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस्ट सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका।
4: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जात है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड सोफा डाइनिंग टेबल ऑफिस टेबल ड्रेसिंग टेबल दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
3: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
4: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808245437।

0: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
1: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
0: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
1: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
2: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नामदरता कहके तहे दिल हुआ जाए।
1: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97649 11786, 98224 92377। सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
3: सोचे भन्दा सस्तोमा हाई क्वालिटी का सोफा र फर्निचर चाहियो, आउनुहोस् सोफा हब नेपालगंज।
4: हरेक सामान को खरीद में 1,000 देखि 20,000 सम्म छूट, 10 देखि 15 वर्ष सम्म को वारंटी, साथ ही फ्री डेलीवरी को सुविधा पनि। अहिले थमाथम बिक्री भइरहेको छ।
3: स्थान राजा चोक राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक को अगाडि।
4: संपर्क 97051148470।
3: सोफा हब नेपालगंज,
4: विश्वास में नंबर 1,
3: क्वालिटी में सब भन्दा बेस्ट।
5: खुशीको खबर,
6: हाम्रै सहर नेपालगञ्जमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आइरहेको नेपालगञ्ज नेशनल अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा दैनिक रूपमा विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदान हुँदै आइरहेको छ। यस अस्पतालमा दैनिक रूपमा विभिन्न विशेषज्ञहरूद्वारा ओपिडी सेवा हुनुका साथै विभिन्न सेवाहरू भइरहेको जानकारी गराइन्छ।
5: हजुर, हाम्रो यहाँ सर्जरी सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, प्रसूति तथा स्त्री रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, नसा तथा हड्डी रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, मस्तिष्क तथा मानसिक सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, छाला रोग सम्बन्धी उपचार, छाला रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, नाक कान घाँटी सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, सुगर ब्लड प्रेसर मुटु रोग पेट छाती कलेजो सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, प्याथोलोजी ल्याब सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, भिडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे तथा अन्य सम्पूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल का साथ ही प्रत्येक महीना को अंतिम शुक्रवार काठमाडौं मेडिसिटी अस्पताल बाट सुगर र थाइरोइड को उपचार का लागि डाक्टर सुमन बराल आउने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौ।
6: नोट, यस अस्पतालमा कार्यरत सम्पूर्ण डाक्टरहरूद्वारा प्रत्येक महिनाको अन्तिम शनिबार निशुल्क ओपिडी सेवा हुनुका साथै जाँचहरूमा 20% विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
5: सम्पर्क नम्बर 081536465, 98239806665 र 98482804665। नेपालगञ्ज नेशनल अस्पताल, बीपी चौक, नेपालगञ्ज।
1: समय में यहाँ पूर्व सूचना पावा जाए, बाढ़ के जोखिम से जान बचावा जाए, विपद बाजा बजाई के ना आई, मने पूर्व सूचना तो नुकसान होई न दी।
7: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के निःशुल्क टोल फ्री नंबर 1155 में यहाँ फोन करके नदी के तह और बाढ़ के अवस्था बारे में निःशुल्क जानकारी लीन जाए।
1: स्थानीय सायरन और झंडा, गाँव में यहाँ रखा गया सायरन के आवाज लंबा या तो छोट, और नदी किनारे में यहाँ रखा गया रंग पेयर सतर्कता लाल खतरा के अर्थ समझो।
7: संचार माध्यम स्थानीय एफएम रेडियो, टेलीविजन और मोबाइल में यहाँ आवा नेपाल टेलीकॉम एनसीएल के अलर्ट एसएमएस नियमित देखा जाए।
1: नदी के जलस्तर नापे वाला खम्भा के रंग के बारे में जानकारी दी जाए। पेयर रंग सतर्कता तो नदी में यहाँ पानी की सतह बढ़ते है, सजग रहा जाए और सामान बांधे शुरू की जाए। लाल रंग खतरा के तह बाढ़ कोनो समय में यहाँ गाँव में यहाँ आई सकत है, तुरंत घर छोड़ के सुरक्षित जगह तरफ जावा जाए।
7: बाढ़ आवे चेतावनी पावे साथ 1-2 घंटा पहले करे वाला काम, संपर्क और संचार
0: परिवार के सब सदस्य लोगन के यहाँ और टोल पड़ोसी के यहाँ सचेत करावा जाए।
1: अत्यावश्यक कागज पत्र और पैसा, नागरिकता, जन्मदर्ता, जगह धनी पुर्जा, नगद और वाटर प्रूफ प्लास्टिक के झोला में यहाँ रख के सुरक्षित रखा जाए।
0: घारी बग्गर के सुरक्षा, घर पलुआ जानवर और चौपायन के यहाँ गटई के डोरी और मुस्की खोल दिन जाए और ऊँचे जगह में यहाँ ले जावा जाए।
1: विशेष ध्यान सौरिहन, गर्भवती, बाल बालिका, वृद्ध वृद्धा और अपांगता भय व्यक्ति लोगन के यहाँ सबसे पहले प्राथमिकता में यहाँ रख के सुरक्षित आश्रय तरफ ले जावा जाए।
0: स्थानीय सरकार समन्वय में यहाँ संचालित परवल परियोजना द्वारा जनहित में यहाँ जारी।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज।
1: नमस्कार और स्वागत है कार्यक्रम दुआरे मुहारे में। आप लोग सुना जाते हैं अपने ही प्रिय स्टेशन रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से प्रसारित वाला कार्यक्रम दुआरे।
2: हाय प्रज्ञा, आज सवेरे से रेडियो लिए बैठो, कहा सुना था?
3: अरे मामा, तुम नहीं जाना थो कार्यक्रम दुआरे मुहारे आओ थे।
2: कब और कौने दिन आओ थे प्रज्ञा?
3: सुनो बताई थे मामा, इतवार मंगल बुध के आओ थे।
2: हाँ, आप लोग कार्यक्रम सुनेगा ना भूला जी, अपने प्रिय संचालिका चंदा जी के साथ में कार्यक्रम दुआरे मुहारे।
1: बदलना आता नहीं हमें मौसम की तरह, बदलना आता नहीं हमें मौसम की तरह, हर एक रूप में तेरा इंतजार करते हैं। बदलना आता नहीं हमें मौसम की तरह, हर एक रूप में तेरा इंतजार करते हैं।
2: कार्यक्रम दुआरे मुहारे हफ्ता में 3 दिन, इतवार के, बुध के, मंगल के, दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक कार्यक्रम सुने ना भूला जाए, धूम धड़ाका चंदा जी के साथ में।

0: हाँ, साथ ही व्यापारी विश्राम के बाद झलक भी आप लोग सुनागा, और इसे ही आप लोग झलक में कौन कौन गीत जौन जौन गीत सुनागा है वही गीत आप लोग अपने पसंद के सुन सका जाते, मगर अपने पसंद के का जो झलक में सुनागा है वही गीत में से कोई भी गीत आप लोग पसंद करा जाए, और अपने अपने जो है तमाम सब साथी मित्र लगाए सब रोहन का सुनावा जाए, खुद भी सुना जाए। तो संपर्क फोन नंबर है 0815-1522 के लाइन पे आप लोग आवा जाए, और जो पड़ोस भारत के जो साथी लोग हैं उन लोगों के खातिर 0097-7081-4152 के लाइन पे आप लोग आवा जाए, और जो झलक माँ गीत है वो आप लोग सुना जाए, तमाम सब साथी मित्र लगाए सब लोगों का सुनावा जाए। और ऐसे ही कार्यक्रम में यहाँ आज जो है इतने दिन के बाद आप लोगों के समझ आए हैं साथी फोनिंग प्रोग्राम लेके, और कुछ साथी लोगों के यहाँ भी अभी जो है कन्फ्यूज रहे कि मतलब अभी कार्यक्रम ना आवत रहा है, उससे पहले भी ना आवत रहा है, तो कोई विशेष कारण बस ना उपस्थित हो पाए रहें कार्यक्रम लेके, लेकिन अब जो है निरंतरता दिया जाए कार्यक्रम के यहाँ आवाजी है, और इसे कार्यक्रम हफ्ता में यहाँ 3 दिन जो है द्वारे मोहरे लेके आवा जाते हैं, इतवार और मंगलवार बुधवार, और जो है हफ्ता में 2 दिन किराव मियाँ जी लेके आवा थे कार्यक्रम चना जोर गरम, बुधवार ऐसे ही बिहार और सोमवार के दिन लेके आवा थे, और शनिवार के दिन संध्या शर्मा जी कार्यक्रम घर अंगना लेके आवा थी, और उमा जो है हम भी हम चंदा और संध्या शर्मा जी साथ में हम दुई सखी लोग आवा जाते, उमा कह रहा थे कोई ना कोई विषय वस्तु के ऊपर जो है बात चर्चा किया जाते, कभी कभी गेस्ट भी लेके आवा जाते हैं, उमा शनिवार के दिन यहाँ कार्यक्रम में यहाँ महीना के आखिरी शनिवार के दिन फोनिंग प्रोग्राम भी रहते हैं जी, माँ आप लोग सलाह सुझाव भी बताई सका जाते हैं, यानी कि सातों दिन कार्यक्रम आवत है, कार्यक्रम के नाम भी अलग अलग तरीके से हैं। तो साथ ही आप लोग फोन लाइन से जुड़ते रह जाए, अब फोनिंग कार्यक्रम के आज पहला दिन है, वैसे तो पहले इतने रहा है पुराने कार्यक्रमों आप लोगों के अपने ही प्ले स्टेशन रेडियो किसार FM 94 MHz से प्रसारित वाला कार्यक्रम द्वारे मुहारे हुए साथी, और बीच में यहाँ बंद भी मतलब विश्राम रहा है, यानी कि गैप फेंकवा रहा है, ता मतलब ना चलत रहा है प्रोग्राम ना रुका रहा है, इसके वजह से भी खैर कोई बात नहीं साथी, आज पहला दिन है आवा है कार्यक्रम आप लोगों के समझ लेके आए हैं, लेकिन अब लेके आवा जाइए, अब आप लोग फोन लाइन से जुड़ा जाइए है ना, अब निराश ना हुआ जाए, काफ़ी साथी लोगों के भी शिकायत सुनने को मिलत रहा है, और मियाँ जी के कार्यक्रम में रहा है कि चंदा जी कार्यक्रम कम लेके ही हैं, शिकायत सुनत रहें हम भी कि मेरे साथी लोग भी श्रोता साथी लोग भी इंतजार में बैठे हैं। खैर साथी अब हम चलित हैं व्यापारी विश्राम के तरफ, और गीत संगीत तो आप लोग सुनते रह जाइए, और आप लोग फ़ोन लाइन से जुड़े के खातिर भी तैयारी में रहा जाए, 0815-1522 के लाइन पे आप लोग आवा जाए, तब तक के लिए चला जाते हैं व्यापारिक विश्राम की तरफ।
1: हाय के गर्ने होला अब, सुगर पनि बढ्दैछ, थाइराइडको समस्या अझ छुट्टै छ, कति ठाउँमा देखाए तर भएन।
2: ए तिमी यति चिन्तित किन, के भयो फेरि?
1: के भने नि, डाक्टरले मलाई हार्मोनको समस्या छ भन्नुभयो, अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई झन् टेन्सन भइरहेको छ।
2: ए अब चिन्ता लिनु पर्दैन, मैले राम्रो खबर सुनेको छु।
1: कस्तो खबर?
2: अब प्रत्येक दिन सुगर थाइराइड तथा हार्मोन रोगका विशेषज्ञ डाक्टर अल्ताबान राही MD इन्टरनल मेडिसिन TU एन्डोक्राइनोलोजिस्ट सर गङ्गाराम हस्पिटल दिल्ली यहाँ नै सेवा दिनुहुन्छ।
1: ए साँच्चै?
2: अझै सुन, महिला बाझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी पनि प्रत्येक दिन चेक जाँच तथा परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ।
1: ए त्यो त झन् राम्रो
2: हो नि। डाक्टर पूनम आचार्य MBBS MD KU IVF स्पेसलिस्ट इन्डिया र डाक्टर सूरज राज भट्टराई MBBS MS KU वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जनबाट सेवा पाइन्छ।
1: वाह, अब त मलाई धेरै ढुक्क लाग्यो।
2: अझै अरू सेवाहरू पनि छन्, दैनिक ओपिडी सेवा, गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा, भिडियो एक्सरे, ECG तथा सम्पूर्ण प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा।
1: यो त पुरा प्याकेज जस्तै भयो नि।
2: हो त, अब ढिला नगर, जाऊ आजै गइहाल उपचार गर्न।
1: हजुर, आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर बिपी चोक नेपालगञ्ज, फोन नम्बर 081531860 र 081531861।
2: अब चिन्ता होइन समाधानको सही ठाउँ सुपर पोलिक्लिनिक।
3: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
4: फेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल फेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 98580304479 र 98481380।
5: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
6: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदैछ नि, पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
5: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
6: 24 घन्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसियु, पिआइसियु, आइसियु, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसुति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
5: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
6: कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
5: सम्पर्क नम्बर 081535717।
7: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
8: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जात है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई दे।

0: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केन्द्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेग्रा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बाँके
1: संचालक पूरन चौधरी
0: सम्पर्क नम्बर 98 4 80 20 697 98 5 80 23 697 और 98 0 14 83 697
2: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए। खुशी के खबर हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
3: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा होए के साथ तमाम मेर के सेवा होता रहा जानकारी करावा चाह जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: शुगर ब्लड प्रेशर हृदय रोग पेट छाती कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
3: वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
2: नोट ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
3: संपर्क नंबर 081-536-465 98-249-80-665 और 98-482-80-465।
4: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोच्छन्, खुशीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
5: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
4: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
5: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आइबीएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
6: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आइबीएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
4: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
5: धन्यवाद शुभश्री आइबीएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
6: थप जानकारीका लागि शुभश्री आइबीएफ क्लिनिक सोल्टीमोड काठमाडौँ, फोन नम्बर 98-61-14-16-99।
7: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज, कृष्णसार जस तेज।

0: वार्षिकोत्सव उत्सवको अवसरमा प्रस्तुत छ सुविसु अपर्चुनिटी। यस योजना अन्तर्गत ग्राहकहरूले पाउनुहुनेछ 25 MBPS इन्टरनेट र क्लियर टिभीको फुल HD प्याकेज प्रति महिना मात्र रु 1040 र 65 भन्दा बढी HD च्यानल भएको क्लियर टिभीको प्याकेज प्रति महिना रु 221। साथै दामी म्युजिकको प्रिमियम प्याकेज 3 महिनाका लागि निशुल्क। शर्त र नियमहरू लागू हुनेछ। थप जानकारीका लागि www.subisu.net.np सुबिसु।
1: अपन स्वास्थ्य के ख्याल रखब सच्चा आत्मविश्वास हुए वही से तो नेपाल परिवार नियोजन संघ बाके शाखा विगत लंबा समय से आप लोगन के सेवा में यहाँ समर्पित है।
2: हमरे यहाँ पूर्ण गोपनीयता के साथेन गर्भपतन परिवार नियोजन के साधन बच्चेदानी के मुंह और स्तन कैंसर के परीक्षण और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध है।
1: विशेष सुविधा
2: अब हरेक इतवार के दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदेश आचार्य के द्वारा विशेष परामर्श और उपचारों भी पावा जाए।
3: देर न कीन जाए, आज स्वास्थ्य परामर्श लीन जाए। पता नेपालगंज उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 9 रामलीला रोड नापी शाखा के अगारी। फोन नंबर 081 530 598।

हाँ तो साथी, अब हम कार्यक्रम के भी अंत में पहुँच चुके हैं। तो ये कार्यक्रम में फ़ोन ट्राई करे वाले और साथी साथ में जो है कार्यक्रम में फ़ोन करे वाले भी साथी लोगन का तहे दिल से धन्यवाद है, और कार्यक्रम का ध्यान पूर्वक सुने वाले भी साथी लोगन का तहे दिल से धन्यवाद। तो साथी, अब इतवार के दिन कार्यक्रम द्वारे मुहारे लेके फिर मिले के वादा करते अंतिम गीत के साथ हम चंदा का दिया जा विदा। नमस्कार।

0: रंगाउँदै देश मेरो एभरेस्ट
1: बीर डेन्टल बीर डेन्टल बीर डेन्टल
2: नेपालगञ्ज शहरमा सञ्चालित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बीर डेन्टलमा दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार काठमाडौँ तथा भेरी अञ्चल अस्पतालका अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछानेद्वारा उपचार गरिन्छ।
3: डाक्टर लामिछानेद्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
2: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
3: फोन नम्बर 081-532-375।
4: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज, डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे का है, कहाँ जाए तो ठीक रही, तनी बताए दियो हमका।
5: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। वहाँ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
4: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
5: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुर्खेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 9844-88-3575 और 9808-25-40-37।
6: हजुरबालाई लामो समयदेखि कानको समस्या छ, नेपालगञ्जमा भरपर्दो र विश्वासिलो अस्पतालका लागि कहाँ जाने होला?
7: ए त्यसो भए त चिन्तै लिनु पर्दैन नि, नेपालगञ्जमै रहेको बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केन्द्र छँदैछ नि। यहाँ त अनुभवी विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिकबाट हरेक दिन कान परीक्षण गरिन्छ। त्यति मात्र कहाँ हो र, यहाँ त लामो समयदेखि कान पाकिरहने जीर्ण रोग, काने ढुसी, कान चिलाउने, कान कम सुन्ने, कान डम्माउने बिरामीहरूको उपचार तथा परामर्श र लामो समयदेखि कान पाकिरहँदा कानको जालीमा प्वाल परेको, कान हड्डी खाने रोगको शल्यक्रिया अपरेसनबाट उपचार गरिन्छ। साथै कान कम सुन्ने बिरामीहरूका लागि कानमा लगाउने सस्तोदेखि महँगोसम्मका विभिन्न मोडेलका कानका मेसिन, हियरिङ एड बिरामीहरूको चाहना अनुसार उपलब्ध गराइन्छ। बिटिई, सिआइसी, आरआइसी जस्ता मेसिनहरू पनि यही उपलब्ध छन्।
6: ए त्यसो भए हजुरबालाई त्यहाँ लगेर उपचार गराउँदा स्पष्ट सुन्न सक्नु होला त?
7: अवश्य, समयमा उपचार गरेपछि धेरै सुधार सम्भव हुन्छ।
6: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केन्द्र,
7: नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, वडा नम्बर 6, फुलटेक्रा, आर्मी ब्यारेक सामुन्ने, राप्ती रोड, बाँके, सञ्चालक पूरण चौधरी।
6: सम्पर्क नम्बर 9848-20-697, 9858-23-697 र 9800-14-83-697।
7: बहिरोपण निवारण कार्यक्रममा सहभागी हौ, नियमित कानको जाँच गरौ।
8: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं, कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
9: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे, बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए, वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
8: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
9: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है, और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, एपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
7: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तहदिल हुआ जाए।
9: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगरपालिका वडा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगरपालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ संपर्क नंबर 97649 11786 98224 92377
10: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
11: Back to back. Back to back.
12: In this song on.
11: Stay tuned.

0: back to back, back to back.
1: In this song on
0: Stay Tuned.
2: अरे सर, हर गाने का रीमिक्स क्यों कर देते हैं सर? सर, हमारी जनरेशन को ये सब समझ में आता नहीं आ रहेगा। कुछ बोलो यार, छोड़ो यार सर, मेरे को
3: गाने का रिकॉल वैल्यू है।
2: अरे कोई कॉल नहीं करेगा भैया गाना।
4: अगर तू समझ नहीं रहा है, ये हिट गाना है, तेरे को नहीं करना है, तू मत कर, मैं जा रहा हूँ।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।
2: समय बदलियो पुस्ता फेरियो तर साथ साथ उस्तै छ।

0: रंग बहार रंग बहार
1: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियर
0: बर्जर पेंस ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि
0: घर रंगाऊ खुशी बनाऊ उपहार जित्ने अवसर पाऊ बर्जर पेंस।

0: मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
4: रंग बहार
5: बर्जर संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
4: बर्जर पेंस ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
5: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि घर रंगाऊ खुशी बढाऊ उपहार जित्ने अवसर पाऊ
4: बर्जर पेंस

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: यो कृष्ण सार एफएम
4: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: होइन, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल यही थियो त।
1: ओहो बाजे, अब उता आइन, ठ्याक्कै यता हेर्नुहोस् त पूर्वपट्टि। हाम्रा सेवाहरू: इन्टरनल मेडिसिन तथा फ्यामिली फिजिसियन सेवा, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा, दाँत बङ्गारा तथा मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा, एकुपंक्चर तथा फिजियोथेरापी सेवा, चौबिसै घण्टा रोड एक्सिडेन्ट इमर्जेन्सी सेवा, चौबिसै घण्टा ल्याब एक्सरे र ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, एयर कन्डिसन इमर्जेन्सी वार्ड, स्ट्यान्डर्ड वार्ड तथा क्याबिनहरू।
2: हजुर, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल, कोहलपुर नगरपालिका, वडा नम्बर 9, हलदारपुर बाँके। सम्पर्क नम्बर 081-414-007 र 98-482-63-399।
3: रंग बहार, रंग बहार।
4: बर्जर संगे उपहारे उपहार। बम्पर मा यामाहा रेजियार।
3: बर्जर पेंस ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
4: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि। घर रंगाओ, खुशी बनाओ, उपहार जित्ने अवसर पाओ।
3: बर्जर पेंस।
5: यो कृष्णसार एफएम
6: 94 मेगाहर्ज, कृष्णसार जत्तिकै तेज।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी